0: जो सांस गिरा सत्याए मेरा हर हर सोमर से जू गुरु मन भावे
1: जिसनु दयाल होए मेरा स्वामी
0: तिस गुर सिख गुर उपदेश सुनावे
1: तिस गुर सिख गुर

आखण कहण न थमिए, पाया कुछ नहीं, अंदर ही सी उसका पता भी नहीं लगा, उसने पाया ही नहीं, कुछ भी नहीं पाया। लेकिन गलबात करके देखो, हर बंदा आखण कहण न थमिए, गलबात दे विच ओ थमदा ही नहीं, चुप ही नहीं करता है। कहिंदे सानू ते इस अफसोस दे नाल गुमसुम हो जाना चाहिदा सी कि ये की हो गया साडे नाल, असी कुछ पाण आए सी, ओ साडे अपने ही पास सी, साडे अपने ही अंदर सी, असी उसनू पाया नहीं है, फिर असी केड़ी गल दा माण करिए। कहिंदे हन

तेरे अपने घर दे विच इतना रंग है, इतना स्वाद है, इतना टेस्ट है, इतनी खुमारी है, इतना सुरूर है, इतनी जॉय है। कहंदे हन की ना माने उसनु, तू मान क्यों नहीं लेंदी, थोड़ा जा यत्न क्यों नहीं करदी कि तू अपने अंदरली जो दुनिया है कि उसनु भी मान के देख। अपने घर हर रंगो, तेरा अपना घर कहंदे हन, बाहरों तेरी जिंदगी जो है वो बड़ी उदास है, बेचैन है, दुखी है, पर तेनू पता नहीं तेरा अपना घर अपना अंदर एक रंगीन दुनिया दे नाल भरिया पिया है। कहंदे हन कोशिश करके, मेहनत करके, हंबला मार के उस अपने अंदरले जगत नू क्यों नहीं मान लेंदी। अगे आखदे हन कहंदे हन

कहते कमलिए बाहर की ढूंढ रही है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर टोले सो परम भुलाए। जिहड़ा बाहर टोल रहा है वो परम दे विच भुलिया पिया है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं। सतगुरु बाबा जी आखते हैं सब कुछ तुहाडे अपने अंदर है, पर ऐ अंधले इंसान तू ए दस। फिर वापस उही सवाल आता है कि तू अपने अंदरों अंदरले जगत चो अपनी अंदरली दुनिया चो अपने ही अंदरों तू की पाया है। बस इस सवाल का इस विचार दे नाल अगर कोई इंसान बेचैन नहीं हुंदा तो वह बहुत गहरी नींद दे विच सुता पिया। सुते पे बंदे नूं जो मर्जी आखी जाओ उसते की असर हुंदा है? कोई असर नहीं ना हुंदा। कोई बंदा सुता पिया होवे उसके आले दुआले जो मर्जी कही जाओ उसते कोई असर नहीं हुंदा, उसनूं पता ही नहीं लग्या की किया गया। या फिर कोई इंसान बिल्कुल बेहोश होवे उसनूं कुछ किया जाए तो उसनूं भी पता नहीं चल रहा, वो बेहोश है। या कोई इंसान कोमा च होवे तो उसनूं भी कोई पता नहीं चलता कि क्या गया है। असी किस स्टेट ऑफ माइंड दे विच हां? अगर ते असी अवेकंड हां, जाग रहे हैं, सुरती च हां, सुते हुए नहीं हां, तो फिर की सानू ये गल बेचैन नहीं करेगी? कोई साडे अंदर सोच नहीं ले आएगी? कोई साडे अंदर फिक्र नहीं पैदा करेगी? कि गुरु नानक देव जी का यह शब्द है, गुरु नानक देव जी महाराज वर्गी हस्ती ये कह रही है कि अंधले क्या पाया जगाए, तो फिर भी राम ना बैठे रहिए। वो तो वह गल हुई जो बाणी च लिखी महाराज ने कि सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सारियां जान लिया सुन लिया फिर चुप कर गए, फिर आराम नाल बैठ गए। फिर भी तलाश ढूंढ खोज क्वेस्ट कोई भी आरंभ ना हुई, जिंदगी उसे तरह की ही रही। कि असि अजिहे लोग हां? गुरु बाबा जी गुरु नानक वर्गी शख्सियत यह आख रही है अंधले क्या पाया जागाए, मीन्स कि इस जगत दे विच आके कुछ पाना सी, तुसी वो पाया है या नहीं? फर्दर क्वेश्चन, महाराज जी वो पाउण वाली वस्तु किथे है? वो कहिंदे तुहाडे अपने अंदर है, तुहाडे अपने अंदर है।

कितना स्पष्ट किया है कि वो अवेलेबल है, वो पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कोई कोई उसनु खोजन की कोशिश करे। इम्पॉसिबल नहीं है, जो खोजे सो पावे, वो जरूर पाएगा जो खोज करनी शुरू करेगा। कहते ओ शक्ति, ओ महान मिस्टीरियस वस्तु जो सारे जगत की रचना नु रचती है, बनाती है, सवार दी है, शिंगार दी है, प्रतिपाल दी है, सबना दे अंदर जीवन जो भरती है। कहते ओ अकाल पुरख वाहिगुरु की होंद, ओ अकाल पुरख जो सारे खंडा ब्रह्मंडा दे विच मौजूद है, उतना ही उतना जितना सारे जगत मौजूद है इस देही दे अंदर मौजूद है। जो खोज है सो पाल, जो उसनु खोजन की कोशिश करेगा वो उसनु अवश्य पा लेगा। चौथा नुक्ता यह है, वो उसनु प्राप्त कर लेगा। हुण असी यह देखना है कि असी इस बॉडी दे विचों की खोजया है, की लभ्या है, की पाया है। पंजवां नुक्ता, गुरु महाराज जी आखदे हन ए जिहड़ी देही है एक घोड़ी है, भाव कि यह वहीकल है, अते इस देही दे द्वारा ही, इस ह्यूमन फॉर्म दे द्वारा ही तुसी उस पॉइंट तक पहुंचना है जिथे वो ट्रेजर है। जे ये देही ना होवे, ह्यूमन फॉर्म ना होवे, तो तुसी वो वस्तु तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस तक पहुंचन दे वास्ते इस देही ने ही तुहाडी हेल्प करनी है। इस तो तुसी कम लेना है। कहिंदे हन एक घोड़ी है, इस उत्ते तुसी ट्रैवल करना है, तुसी इस दे मास्टर हो, तुसी इस दे ड्राइवर हो, तुसी इस दे संचालक हो, तुसी इस नु चलाण वाले हो, अते इस दी लगाम तुहाडे हथ विच होनी चाहीदी है। पर ऐसा ते नहीं है, ऐसा नहीं है। कई दफा जो नहीं बोलना चाहुंदे, जो नहीं बोलना चाहीदा, वो असी बोल जाने हां। वो फिर क्यों बोल हुंदा है? जो नहीं करना चाहिदा वो असी कर जाने हैं, तो जो करना चाहिदा है वो असी नहीं करते। तो असी देही दे मास्टर नहीं हां कि असी इसनु अपनी मर्जी दे नाल जो वर्तीए, असी इस इंस्ट्रूमेंट दे गुलाम बन गए हां, सेंसेस दे गुलाम बन गए हां। इंद्री सबल निबल बबेक बुद्ध कर कल दे कीर्तन च आखी से पंक्ति के इस दिया इंद्रियां बलशाली हन, हुण ओ धुई फिर दिया हन, ओ खिची फिर दिया हन सानू। ओ गल हो गई है कि सवार नू हुण घोड़ी खिची फिर दी, धुई फिर दी है। ओ सवार दा हाल तुसी देख लो की होएगा। घोड़ी किसे दे पास होवे, ओ उस उत्ते सवार हो जाए, फिर उसनू ए ना पता चले कि घोड़ी ने हुण उसनू किधर लैके जाना है। वो उसको रोकना चाहे वो रुके ना, तो किसे खड्डे च डिग के ही मरेगा। गुरु बाबा जी आखदे हन इस नू अपने कंट्रोल दे अंदर ले आओ, इस दे मास्टर बनो, तो इस नू उस पासे वल जान नू वरतो जिस पासे वल जान नू तुहानू हदायत कीती जांदी है। उस ट्रेजर लैंड नू जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, जिथे खजाना है वो तो आड़े अपने ही अंदर है। कहते हैं इस देही दे विच ही है, इस देही तो बिना उसनु पाया नहीं जा सकता। सो इस देही नु विगड़न ना दियो, कदे इस दे स्वभाव विगड़न ना दियो, इस दी आदतां विगड़न ना दियो, इस दी एनर्जी नु वेस्ट ना करो, इस नु गलत आदतां ना पाओ, क्योंकि ये तुहाडी ट्रांसपोर्टेशन। अगला नुक्ता, गुरु बाबा जी आखते हैं कि ए जो देही है, छेवां नुक्ता, सब तमाम जूना तो श्रेष्ठ है, उत्तम है, सुपीरियर है। आप जी ने एक पंक्ति सुनाना, आज गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों महाराज जी ने लिखिया है, बहुत ध्यान नाल सुनना। सब माया मोह शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई। यह हुण मेरी अर्ज है कि यूएसए दे विच जां होर जिथे भी कीर्तन का मौका मैनू मिलिया है, कोई खास पंक्ति हुंदी है तो मैं वो सारी संगत नू बुलाना हुंदा, सारी संगत उसनू बोले, ताकि दो चार दफा बोलन नाल वो पंक्ति याद भी हो जांदी, क्योंकि वो बहुत ही एक खास पंक्ति हुंदी। तो आप जी दास तो बाद अद्धी तुक मैं पहला बोलांगा, फिर मेरे कहन तो बाद आप सारे बोलो, तो ए पंक्ति आप नू याद हो जाएगी। सब माया मोह
शरीर हर किया विच देही मानुख भगत कराई। एक दफा फिर, सब माया मोह शरीर हर किया विच देही मानुख भगत कराई। इसका अर्थ यह है, सब माया मोह शरीर हर किया, और जितने भी शरीर हन, पशुओं के शरीर, कीड़े मकौड़ियां के शरीर, पानी च रहने वाले जीव जंतुओं के शरीर, उड़न वाले पंखियों के शरीर, भाव के जितनिया भी फॉर्म्स हैं, जितने भी शरीर हैं, कहिंदे उन्हां सारिआं दे विच माया मोह है। वो सारे गुण जड़े मोह, ममता, क्रोध, ठगी, इतआद, वैर, मेर, तेर, अपना, बिगाना, ये सब कुछ बाकी तमाम शरीरां दे विच है। अते वो सब कुछ इस शरीर दे विच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर उन्हां सबना नालों उत्तम है। सब माया मोह शरीर हर की है। ए जितने भी साडे सुभा हन, कहिंदे हन ये कोई तुहाडे नहीं हन, ममता, मोह, अटैचमेंट, जो ईरखा, वैर, ये सब कुछ जो है माया मोह सारे बाकी शरीरां दे विच है। पर मनुखी शरीर दे विच जो सिग्निफिकेंट गल जड़ी है वो की है, कहिंदे हन विच देही मानुख भगत कराई। विच देही मानुख भगत कराई, कहिंदे मनुख दी देही दे विच कहिंदे हन एक ही गल दी विशेषता है कि इस देही दे विच भगती हुंदी है, इस देही दे विच भगती कीती जा सकती है। इस करके ये देही जिहड़ी है सब तो ज्यादा सुपीरियर फॉर्म है, सब तो ज्यादा उत्तम है। गुरु महाराज जी कहिंदे हन, अवर जोन तेरी पनहारी, बाकी सारिया जूना तेरा पानी भर दिया हन, तेरिया गुलाम हन, तेरिया दास हन, तू जो चाहे उन्हां तो करवा सकदा है, हाथियां नू नचा सकदा है, शेरां तो तू डांस करवा सकदा है, हर जून जो है उसनू तू जिमें चाहे वरत सकदा है, तेरा पानी भरनगियां। कहिंदे हन अवर

सिकदारी। इतना कुछ हुंदिया होया भी ए इंसान, गुरु महाराज जी आखते हैं तेरे अंदर फिर रब ने एक खास ज्यूल रखिया है, खास जोत रखी है, खास पदार्थ रखिया है, जिस नाल तेरे सारे डर, सारे दुख, सारिया दर्दा, सारिया थुड़ा, सारिया तकलीफा कहिंदे उस वस्तु नूं प्राप्त करन दे नाल समाप्त हो सकदियां हन। अगर तू उस नूं नहीं पाया तो फिर हाले तक तू की कर रहा है? फिर कहिंदे हन तू की पाया है इस जगत दे विच आके, अंदले क्या पाया जग आए। समा भी समाप्त है, प्रेम नाल सारे गाओ। अते हुण इस विचार दा जो कंडा चुभना चाहिदा है, जे नहीं चुभदा, यह सानू नहीं साडे अंदर कोई टर्मोइल ल्यांदी, साडे अंदर नहीं सोच विचार पैदा करदी, फिर इसका अर्थ यह है कि असी किसी ना किसी नशे के अधीन हाँ, कि सुन के भी साडे उत्ते असर नहीं हुंदा। प्यार नाल।

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज अपने इस पावन पवित्र श्लोक दे विच आख रहे हैं, जो शायद साडे कदी ख्याल च भी ना दे गुरु बाबा जी साडे जीवन नू जिस तरह असी जींदे हां अपने वालों तो असी सही ही जींदे, पर गुरु बाबा जी की ऑब्जरवेशन साडे जीवन के प्रति यह है कि जीवन की बिद ना है। अगर आप जी इस पंक्ति नू नोट कर लो तो लिख के ते हर वेले सामने रखो ताकि ए सानू रिमाइंड करांदी रहे कि बेशक असी ग्रो हो गए हाँ फिजिकली, बेशक असी इंटेलेक्चुअली भी ग्रो हो गए हाँ, बेशक असी सो कॉल्ड सिविलाइज्ड हाँ, बेशक असी बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी दे युग दे विच जी रहे हाँ, पर गुरु बाबा जी दी निगाह दे विच, गुरु बाबा जी दे ख्यालां दे विच आले सानू जीना ही नहीं आता, तो कितनी बड़ी गल है। और इसनू जो ध्यान दे नाल सुनेगा उस दे अंदर ए विचार ए लाइन एक तूफान उठा देगी, एक टर्मोइल ले आएगी, एक सोच विच इंसान नू जरूर पाएगी कि सच मैनू जीना नहीं आता, कि मैनू जीना ही नहीं आता, जे मैनू जीना ही नहीं आता फिर मैनू आता की। फिर इसका अर्थ यह होया कि जब गुरु बाबा जी आखते हैं कि जीवन की बिद ना है, जीवन की विधि ही नहीं आती, जीना ही नहीं आता, जीवन की कला ही नहीं आती, आर्ट ऑफ लिविंग जो है वो ही नहीं आता, तो फिर की मेरा बाकी सारा कुछ जो कुछ मैं करता हूं वो गलत नहीं होएगा। फंडामेंटल चीज जो है कि जीवन की विधि नहीं आती, जीवन की विधि नहीं है, तो फिर तो मेरा सब कुछ ही जो मैं सोचता हां सही करता हां वो गलत हो गया, अपने आप ही गलत हो गया। पर ईमानदारी के नाल प्लीज ट्राई टू रिफ्लेक्ट विद इन एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि कितनी दफा असी अपने आप नू एक कदे वंडर कीता होएगा कि मैनू जीना आंदा भी है या नहीं, जीना आंदा भी है या नहीं। मेरे ख्याल च असी ये सोच नहीं सकते, मेरे ख्याल दे विच असी अपने प्रति ये डाउट भी नहीं कर सकते कि सानू जीना नहीं आता, बिकॉज वी नो हाउ टू ड्रेस, हाउ टू कुक, हाउ टू ईट, हाउ टू सोशलाइज, हाउ टू कम्युनिकेट, सब कुछ सानू आता है, तो फिर असं किस तरह कह सकते हैं कि सानू जीवन की विद ना है, जीवन की विधि ही नहीं आती। गुरु महाराज जी, गुरु अमरदास जी महाराज जी की इस लाइन में हुण बहुत समाधि लगाओ, अखां बंद करके प्रेम दे नाल इन्हां वचनां नू
ओ रबी नूर रबी आत्मा जो साडे जीवन नू देखती है कि उपरों उपरों तो बहुत फले फुले हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं, लेकिन विच की है। आप आसा जी बात सुन दे हो, मैं आपको फिर सुना देना। फलिए फुलिए बपड़े विचारे देखने बहुत फले फुले पे हैं, प्रॉस्परस हैं, वेल टू डू। फलिए फुलिए बपड़े भी तन विच सुआ, पर अंदर तन दे विच सुआ है, कुछ भी नहीं राख। पर इंसान दे वास्ते बहुत चोट वाली गल है कि मैं और मैनू अज ये सुनने मिल रहा है कि मैनू जीण दी ही विधि नहीं आती। अज भी मैनू ये कह रहा है कि मैनू जीना ही नहीं आ। आप जी ने कितनी एक दफा इस पंक्ति उत्ते कदे पाउंडर किया होगा। ईमानदारी दे नाल अपने अंदरों ये जवाब लभो कि कितनी एक दफा ये गल सुनन नू मिली है, कितनी एक दफा ये गल ही सुनन नू मिली है, कितनी एक दफा किसी ने यह पॉइंट ही रेज किया है या सानू अवेयर करवाया है कि तुहानू ते भी हले जीना भी नहीं आता। पर असी आके महाराज जी नू नमस्कार कर सकते हैं, हुण महाराज जी नू असी चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि साढ़े गुरुदेव हैं। अपने गुरुदेव नू असी क्रॉस भी नहीं कर सकते, उन्हां दे नाल असी डिसएग्री भी नहीं कर सकते कि महाराज जी नहीं आपने लिख तो दिता है पर ऐसी भी कोई गल नहीं है, जीना सानू आंदा है, यह भी असी कह नहीं सकते क्योंकि सानू पता है कि जो गुरु बाबा जी आखते हैं त्रैकाल सत। सो आज वो मौका है कि असी, मैनू नहीं पता शायद ये पंक्ति आप जिन्हों पहले किसी ने इस उत्ते मैनू नहीं पता शायद ये पंक्ति आप जिन्हों पहले किसी ने इस उत्ते एम्फेसिस पा के कही होए कि साड़ी सिचुएशन ये है, नो मैटर हाउ एजुकेटेड वी आर, नो मैटर हाउ सक्सेसफुल वी आर, नो मैटर व्हाट वी आर एंड वेयर वी आर, बट द बॉटम लाइन इज वी डोंट नो हाउ टू लिव। सानू जीना ही नहीं आता, जीवन की बिदना है। प्यार नाल इस मंत्र सुनो।

आप जी याद होएगा जिस पंक्ति उते कल दास ने कीर्तन छोड़िया सी, आप जी बेनती की थी सी इस पंक्ति नु अपने नाल लेके जाओ। वो केड़ी सी? गुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी आखते हैं कि मेरे जीवन दी यात्रा सफल हो गई। सफल सफल भई सफल यात्रा, मेरे जीवन दी यात्रा सफल हो गई। और जिसनु जीवन जीना आंदा है उससे भी ही जीवन दी यात्रा सफल हो सकती है। जिसनु जीवन ही नहीं जीना आंदा वो किथे पहुंचेगा? वो किथे भी नहीं पहुंचेगा। तो जीवन एक यात्रा है और उस यात्रा के दौरान असी जो कुछ भी करते हैं वो असी गलत करते हैं, क्योंकि सानू जीवन की विधि नहीं आती। जीवन की विधना है, असी सोचते हाँ असी सक्सेसफुल हो गए, असी कामयाब हैं, पर सक्सेस के उत्ते जो गुरु महाराज जी का अपना विचार है, जो गुरबाणी की रोशनी है, असी बींग ए सिख सक्सेस नू गुरु बाबा जी तो ही समझना है ना कि गुरु साहब सक्सेस किसनू आखते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु नानक देव जी महाराज की निगाह सक्सेसफुल कौन है, सक्सेस की है? वो है कि जीवन की यात्रा सफल हो जाए, जीवन जिस मंजिल ते पहुंचना चाहिदा है उथे पहुंच जाए। बाबा जी सक्सेस दे उते शब्द उचारदे हन, कहंदे हन

बहुत प्यारी गल आखी समझण वाली। स्त्री पुरख है खटिए भाव, स्त्री अते पुरख, स्त्री वास्ते पुरख अते पुरख वास्ते स्त्री एक प्रोडक्ट की तरह रह गया है कि इस तो मैनू मेरी जिंदगी च की फायदा हो सकता है, मेरे लिए बेनिफिट्स की हैं। मेरे स्वार्थ के में पूरे होते हैं, मैनू सुख इस तो के में मिलता है, ये नहीं कि इसनू मैं तो सुख किस तरह मिलता है, नहीं, दोनों का टारगेट है कि मैनू सुख के में मिलता है। खट्टी का भाव कि मैं की खटना हां, व्हाट आई अर्न आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। अते वो सारे का सारा वर्ल्डली सेंस दे विच। अगर कहते कुछ नहीं मिलता जो एक्सपेक्टेशंस होंदिया हन, वो एक्सपेक्टेशंस अगर पूरिया नहीं होंदिया तो कहते दोनों के दिलों के विच की आ कि भावें आओ तो भावें जाओ, भावें रहो तो भावें कट्ठे ना रहो। कहते इत्थे भी जीना नहीं आया, इत्थे भी समझे नहीं कि यह रिश्ता आत्मक सफर तय करने के वास्ते दो आत्मक पंध ही को ट्रैवलर इकट्ठे होने चाहिए सन, जिहड़े हैंड इन हैंड एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते करते दोने आपो अपनी मंजिल ते पहुंचते, एक दूसरे को दोने जाने सपोर्ट करते आपो अपनी डेस्टिनी ते पहुंचने के वास्ते, पर दोने जाने एक दूसरे नू यूज एंड अब्यूज करते हैं फॉर देयर ओन परसनल नीड्स। इस करके कहते हैं वो परसनल नीड्स जदों पूरियां नहीं होंदियां तो कहते बेशक भावें आवो ते भावें जाओ।

ये संसार एक वृक्ष है, इस वृक्ष ते सारे ही पंखी बैठे हैं। आप जानते हो कि पंखी अपनी अपनी चोग चुग के जदों सूरज लथ जांदा रात पैण लगदी है तां वृक्ष ते आके कट्ठे हो जांदे हन। इसे तरह ये संसार वृक्ष है, 84 लख जूना विचों परमदा परमदा अपने कर्मा दा खट्टिया खांदा खांदा ए वृक्ष रूपी इस संसार ते आउंदा मनुष्या जन्म प्राप्त करके। जिस तरह पिंडां विच शहरां विच हर एक मनुख ने अपना अपना घर बनाया, इसे तरह वृक्ष ते भी अपने अपने आलने बनाए होंदे हन। पंखियां ने ओ आके बैंदे हन ते जां रात बीती सवेरे अपने अपने राही पैंदे हन, उड़ जांदे हन। इसे तरह ए मनुष्या जन्म भी एक वृक्ष है। मनुष्या जन्म पंछी रूप होके संसार ते आउंदा है। मनुख अपने अपने कर्म भोग भोगदा होया, जिन्हां ने ता भाई इत्थे आके अपना जीवन मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईयां तत मिठा बोलदे हन, नेव चलदे हन, अपनी किरत कमाई विचों चंगे पासे भले पासे लाउंदे हन। सास ग्रास नाम जप के जो जांदे हन उन्हां दा आउणा सफल हो जांदा है, ते जेड़े इत्थे आके माड़े कर्म करके जांदे हन उन्हां नूं फिर 84 लख जून दे गेड़े विच दुख भोगने पैंदे हन। इस लई हजूर कहंदे हन भाई ए मनुष्या जन्म प्राप्त होया है, इस नूं जप जप के सफल करना। जिस तरह दिन चढ़दियां पंछी अपनी अपनी चोग चुगन लई अपने अपने कर्मा दा खट्टिया खान लई उड़ जांदे हन, इसे तरह जदों काल रूपी सूरज चढ़दा है ते मनुख भी फिर ए पंज भूतक शरीर छड़ के तुर जांदा है। इस लई गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलन हार, किदे नाल दोस्ती करिए। ख्याल कीता हो सकदा है कि राजा सुखी होवे पर ओ तां सब तो दुखी है, हो सकदा है महल माड़ियां विच रहण नाल कोई सुख प्राप्त होवे ओ भी नहीं है, हो सकदा है चंगे बस्तर पहनन नाल जां गहने पहन नाल सुख मिल जाए ओ भी नहीं है, क्योंकि सुख तां हरि दे नाम विच है, सुख तां परमेश्वर दी भगती विच है। इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन सब जग

एक बाजार है। इस बाजार विच कई तरह के सौदे पे। गुरु नानक सच्चे पातशाह बख्शिश करते हैं, बाजारी बाजार में आए कढ़े बाजार। इस संसार रूपी बाजार विच अनेकां बाजार हैं जिथे जीव विचर रहे ये सौदा खरीदन लई आया। पर कई वेरा ऐसा भी हुंदा है कि घर तो चलता है कुछ सौदा खरीदन लई ते खरीद के कुछ होर ले आउंदा है। क्योंकि इस संसार विच वस्तुआं ही ऐसियां पईयां हन कि जो ये घर तो सौदा खरीदन लई चलिया सी वो सौदा इसनू विसर ही गया। इस बाजार विच केड़ियां वस्तुआं हन? गुरु नानक सच्चे पातशाह कहिंदे न बाजारी बाजार में आए कढ़े बाजार। गावे राजे राणियां बोलें आल पताल, लख टक्कियां के मुंदड़े लख टक्कियां के हार। ते हजूर कहिंदे न जिन्हां पदार्थां

अगर तू घूम रहे है कादे लई इस शरीर विच हार पाण दे लख तकिया के मुंडड़े लख तकिया के हार जित तन पाई है नानका शेतन होवे शार इस शरीर नू सजाउन लई तू बड़िया वस्तुआं खरीद रहे है कदे तू अपनी आत्मा नू नहीं सजाया कदे तू अपनी आत्मा नू नाम दा भोजन नहीं दिता शब्द दे गहने नहीं पाए ता फिर तेरा संसार ते आउना किवें सफल हो सकदा क्योंकि लख टक्कियां के मुंदड़े लख टक्कियां के हार जित तन पाईए नानका से तन होवे शार ए शरीर ता एक दिन मिट्टी हो जाएगा स्वाह बन जाएगा एक स्वाह दी मुट्ठी है ए शरीर इसलिए हजूर कहंदे न भाई इस शरीर लई तू बहुत कुछ करदा है क्योंकि मनुख सौंदा है शरीर लई खांदा है 36 प्रकार दे भोजन इस शरीर लई चंगे चंगे सोने वस्त्र पहनदा है कादे लई शरीर लई आख्या अज तक तू सब कुछ शरीर लई कीता है पर जिस आत्मा दे आसरे ए शरीर चल रहा है उस आत्मा नू तू भुखिया ही मार देता उस आत्मा नू कदे नाम दा भोजन ना दिता ए ता तन शार हो जाएगा इथे ता जो कुछ नजर आ रहा है सब कूड़ है वेखदे हो ना मनुख चला जाए संसार तो ते किवें अर्थी जा रही हुंदी है उस वेले मनुख दा मन निर्मल हुंदा है उनू याद आउंदी है मौत कि मैं भी एक दिन जाना पर जदों शमशान भूमिका तो बाहर निकलदा है ते फिर ओही गल्लां ओही निंदिया चुगली ओही सब कुछ फिर मोह माया दे जाल विच फस जांदा है आख्या जे परमेश्वर नू याद रखना है ता मौत नू चेते रख धन गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी दा दरबार सजिया होया राजा आया दर्शन करन लई ते देखिया इत्थे सारे ही नर नारी बिरद बच्चे जवान सब बैठे हन जुड़े हुए हन राजे दे मन विच शंका हो गई भई गुरु भी जुबा अवस्था दे बच्चे बच्चियां भी इत्थे बैठे हन बिरद भी बैठे हन बच्चे भी जुड़े बैठे हन ते ए थिर किवें रहिंदे होणगे क्योंकि मन ता हर वस्तु नू वेख के लुभायमान हो जांदा है अंतर जामी धन गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह राजे दे दिल दी गल नू बुझ गए भाई राजे दे मन विच शंका आ गया कि जिथे एने पदार्थ गुरु के दरबार विच चढ़दे हन एनिया वस्तुआं लोग लियाउंदे हन एडी माया दा पसारा है फिर नर नारी सब आके इथे जुड़दे हन इना दा मन इना दी आत्मा किवें स्वच्छ रहिंदी होवेगी ये सब कुछ जानी जान धन गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जान गए भाई राजे दे मन विच शंका हो गई है ओदी शंका नू निवृत्त करन लई आख्या राजन तेरी ता उम्र ही कुछ दिन रह गई है तेरा ता अंत समा नेड़े आ गया ते कुछ कर ले कुछ जप ले हुण राजा सुन के भई मेरी उम्र थोड़ी रह गई है अपने महलां नू आया हर वेले मौत चेते है पता नहीं किस वेले आ जानी हुण कुछ चंगा नहीं लगदा राज गद्दी ते बैठना चंगा नहीं लग्या धन दौलत विच विचरदिया चंगा नहीं लग्या अहलकार हथ बद्दी खड़े हन सेवा लई उड़ीक कर रहे हन हुण सेवा भी करौणी चंगी नहीं लगदी राणियां दे कोल जाना भी चंगा नहीं लगदा रंग रलियां मनाउणियां भी चंगियां नहीं लगदियां सब कुछ संसार बिनस जान वाली वस्तु लगन लगा जदों कुछ दिन बीत गए तां धन गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने सेवक नूं भेजिया आख्या जाओ राजे नूं कहो भई तुहानूं सतगुरां ने याद कीता है जदों सेवक ने जाके सुनेहा दिता तां राजा कहिंदा मेरे कोल तां हुण तुरिया भी नहीं जांदा शरीर इतना निर्बल हो गया है हर वेले मौत चेते आ रही है पता नहीं किस वेले मौत आ जानी है सेवक ने
ਆਖਿਆ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿਚ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਸੁੱਖ ਭੋਗੇ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਰਾਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਕੀ ਮਾਣਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਮਾਣਨਾ ਸੀ ਆਨੰਦ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਨੰਦ ਕੀ ਮਾਣਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਨਾਰੀ ਬਿਰਧ ਬੱਚੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਅਤੇ ਚਿਤਨ ਔਰ ਜੜ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ, ਇਹ ਚਾਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਜੇ ਦੋਸਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ।

नानक पातशाह जी दे दर दी सेवा कर दिया। पाई लेना जी हर इम्तिहान विचों पास होए। एक वेरा दा जिक्र है, गुरु नानक सच्चे पातशाह लैने नूं कहन लगे बाहर जाके वेख कितनी कु रात होर है, ते अपनी सियाणप नहीं कीती, चतराई नहीं कीती, आके कहन लगे गरीब निवाज जितनी तुसी बिताई है बीत चुकी है, जितनी बाकी है वो भी तुहाडे हुक्म विच बीत रही है, उचारण करो श्री। अकाल पुरख वाहिगुरु दा रूप समझ के भाई लहने ने सेवा कीती। अज अखीरला परचा है, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने बड़ा वैराट रूप धारण कर लिया। आप अगे अगे हन ते पिछे संगतां जा रहीआं हन। अगे जाके की तकिया, तांबे दा ढेर पिया, आख्या भाई तांबा चुको, लै जाओ, वेचो, घर दा निर्वाह करो, जाओ साडे मगर तुहानू की मिलेगा। जिहड़े तांबे दे इच्छक सन उन्होंने चुकिया ते वापस मुड़ गए। अगे जाके की तकिया, चांदी दा ढेर पिया, आ चुक लो भाई चांदी, साडे नाल आके तुहानू की मिलेगा। चांदी दे व्यापारी चांदी लैके चले गए, अगे जाओ देखिया तो सोने दा ढेर पिया, भाई जितने को रहिंदे हो आ चुक लो सोने। चांदी सोने दे व्यापारी सोना लै गए, होर बियाबान जंगल विच जाके की तकिया, हीरियां मोतियां दी ढेरी पई है, मुठियां भर लो भाई, साडे कोलों तुहानू की मिलेगा। हीरे मोतियां दे व्यापारी ओ लै गए, हुण धन गुरु नानक पातशाह जी ने जदों मगर देखिया ना, होर तां सारे चले गए हन, पर एक भाई लैणा जी खड़े हन। लैणे आ इतनियां दातां लुटाईयां हन, इतने पदार्थ वंडे हन, कोई तुम्हीं पदार्थ चुक के चला जांदा, तू साडे मगर आ गए। भाई लैणा जी दे नैन कटोरे बाहर आए, ओ मेरा दे साईं, ओ गरीब निवाज सच्चे पातशाह, जेड़े कुछ लै के चले गए हन ना, संसार ते उन्हां दा कोई रिश्तेदार है, कोई घर बार है, कोई शाक संबंधी उन्हां दा है, कोई आसरा उन्हां दा है, पर मेरा तां तेरे बिना कोई होर आसरा ही नहीं, मैं किस तरह मुड़ जावां, मेरा तो सबो कुछ तू ही है। जदों ए गल आखी तां धन गुरु नानक पातशाह जी ने भाई लहने नूं अपने गल नाल ला लिया। लहने को अपने अंग लगा, लहने को अंगद कर दिया, दूसरे गुरु नानक बना दिता। ए दातां मिलदियां हन गुरु नानक दे दर ते सेवा करके, पर सेवक होके आराम ना पाले, इस दर दा भिखारी बन गया तो अहंकार ना करे, मान ना करे, ते फिर केड़ी वस्तु है जेड़ी नहीं मिलेगी भाई तेनू। इसलिए गुर पीरां की चाकरी, गुरु दे दर दी सेवा तां औखी है। गुरसिख लंघ गुरु पै जाई, समुद्र सागर होवे बहु खारा, बड़ा औखा है गुरु दे मार्ग ते चलना। इसे लई हजूर कहंदे ने, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर दरीजे सिर दीजे कान न कीजे। आख्या जे इस प्रेम दी गली विचों लंघना चाहना है तो फिर इस सिर दा सरफा कदे ना मंगी, जे सिर भी लग जाए तां वी इह सस्ता सौदा समझी। सात संगत बोलो श्री सिर दीजै कान ना कीजै। ते फिर जिन्हां ने आपा गुरु दे अर्पण कर दिता प्यारी सात संगत, फिर ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए, ओ दाता नहीं दाता वंडन वाले बन गए, दातार बन गए, जिन्हां ने गुरु नानक दे दर दी सेवा कीती है।
ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੜੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਬਣ ਗਏ।

नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जिहवा कहां को बगता, बिन श्रवना कहां को सुनता।

साहिब गुरु नानक देव जी बचन कर रहे हैं, ध्यान देना बाणी पातशाह आखदे।

मान मांगो, मान इसलिए मंगया क्योंकि मान तो बिना, इज्जत तो बिना जिंदगी अधूरी। संसार विच रिस्पैक्ट इज्जत होनी बड़ी जरूरी। आ तुसी वेख लो कि निर्धन नू, कमजोर नू कदी किसी ने सन्मानिया नहीं, नेड़े बिठाया नहीं। इसलिए कहिंदे ने मान मंगिया, फिर तान मांगो, तान कहिंदे ने जोर भी मंगिया, जो तेरा दिता होया मान बरकरार रह सके, उन्हूं सांभ सका। धन लख भी सुत दे, धन भी होना बड़ा जरूरी है। साहबाणी विच कहिंदे ने ना, निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे चित ना धरे। निर्धन नू, गरीब नू कोई आदर नहीं दिंदा। इसलिए इन्हां चीजां दा होना बड़ा जरूरी है। मान मांगो, तान मांगो, तन लक्ष्मी सुत दे। परमात्मा दे तन होवे, लक्ष्मी स्त्री भी चाहीदी है। भगत धन्ना जी कहिंदे ने, घर की गेहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी। घरवाली भी चंगी होनी चाहीदी है, सुगुण सुशील सियाणी होनी चाहीदी है। ते कहिंदे ने फिर सुत, हे परमात्मा पुत्र भी घर विच चाहीदा, क्योंकि पुत्र भी एक निशान है, उहदा भी घर विच होना बड़ा जरूरी है। तन बहुता होवे, हर खुशी घर विच होवे, ते जे घर पुत्र नहीं, संतान नहीं, ते तां भी दुख है, वह भी बर्दाश्त नहीं हुंदा। इस तरह हे परमात्मा हर कोई तेरे कोल मंग मंग रहा है। मन मांगो, तान मांगो, तन लक्ष्मी सुत दे। किस लिए मांग रही? साजनो तू मीत मेरो, गह तेरे सबके। तू मेरा सज्जन नहीं, तू मेरा मित्र नहीं, उस मित्र होने के नाते मैं ये मंगा तेरे को मंग रही हूं। सतगुरु कहते ने यह मंग जायज होगी, क्योंकि तू अपना सज्जन बना ले, अपना मित्र बना ले। वाकई ही भाई, जी उन्हूं अपना बना के मंगे ते हर दाद चोली